कनेगडे का आकाशवाणी शिलोंग पर लोनोसंग भागने का पौर नागने का स्टेशन नी प्रयासंगो भाई भी बारो शकी प्रोग्राम की पामतासंगी नाग आकाशवाणी शिलोंग का बाप हिलाब न्योसंग हाउलाइस पास उपन्यो पन्यार मीटर्स मीडियम वेव वैरंकार बाव प्रास पार्प साकला हाज फिलार बन्योसंग हाका न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: കനികടേക്ക് ആകാശവാണി ഷിലോങ് പ്രലോക് നങ്സ്ങാപ് കപ്പോർ മുതാക് ലാഡാ റേവുചിയെ പഞ്ഞ സോ അനവർക്ക് ആകാശവാണി ഡൽഹി നമുതാക് കുബോർ ഹിന്ദി പൻപോർ കുബോർ ഫരങ് ഹാ കപ്പോർ റേവുലാസൻ കനികടേക്ക് ആകാശവാണി ഷിലോങ്.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे. दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है. प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे. श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की. विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा.
2: The discussions also.
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई. चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें.
2: Can enter the Venezuelan market successfully.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है. अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की. दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की. दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है. दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की. रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे. एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा. नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे. श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे. नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा. आज विश्व पर्यावरण दिवस है. पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी. ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है. जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today. He will dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat across the road, power and industrial sectors. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary healthcare across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution rates, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said, Ministry of Ayush has launched a Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyle across communities. The Prime Minister urged athletes from across the world to help spread awareness about yoga beyond the championship.
5: जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
4: Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare, and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health, and people-to-people ties. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IS officer, as advisor to the Prime Minister Narendra Modi. The Department of Personnel and Training informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on 10th of this month for a period of 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Neelkant Mishra as Executive Director, World Bank Headquarters, Washington, D.C. for a tenure of 3 years. The Department of Personnel and Training informed that the tenure of Parmeswaran Iyer has also been extended till the new incumbent assumes charge. The Reserve Bank of India, RBI, will announce its bimonthly monetary policy today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions taken by the Monetary Policy Committee, MPC, this morning. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhashi Kashyap passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. He was 97. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ramnath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as a Secretary General of Lok Sabha from 1983 to 1990. In his condolence message, Prime Minister Narendra Modi said that Dr. Kashyap was one of India's foremost constitutional scholars whose contributions to parliamentary and constitutional discourse enriched the society. World Environment Day is being celebrated across the globe today. It has been observed on 5th June every year since 1973 as part of the United Nations Environment Programme to build awareness to save life on Earth. The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect nature and the planet Earth. On the occasion of World Environment Day, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav and Minister of State Kirti Vardhan Singh will participate in a tree plantation program. India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament at Kakamegara Hockey Stadium in Japan today. And that is the end of this news bulletin.
0: Kanigade ka Akashvani Shillong palona sanga phadien jong ki khaborna ka Akashvani Delhi ka parna takla dab rish phom minute bad gine phaino ashak program kiching rwai aingo te shwan sdang ya kanig program tanya pusan lor ka sambo aching prakhat pam ta sangi thodien ka santrek ujalli war jar arpan rew u Charles Dickens wong om don ubamlar kam ha kanig prathai ubana ban yakit yak khya ka shon jong wai pan Omdan upamlar kam ha kani ka prathai ubala ban yaket ya ka khya ka shon jong weipan tiadin kitu kisam ba jing prakhatin sedang no ya ka vandana program gijing ruai aingo parha kani ka program philaban yo sngwi gijing ruai aingo kten khasini pa anderson kharthang mau par kin hon gijing ruai gi bilai krteng jingo par ka buram you try but nilong ki atira jong play tenya skamanta ye kini ki artli gijing ruai aingo

हरियन की तो भी चिरवाई आईगो चिंगो पर बुरा यू त्राई पर निलों की आती और जो ब्लै बलारवाई रे एवा अंडरसन खरथमा पर किन हुन लिनस का पनमता की चिंगरवाई आईगो के दिन जयंती आने पर नंदो ए वन खार की चिंगरवाई की बेला आकर तें टू में वतम पर एक टी ओ वन बोर पर का चिंगरवाई आईगो के दिन करो ना ई ब्राउनिंग टन सांगमा

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व

0: इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
0: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघचालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
7: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
9: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
8: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
10: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
8: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide.
10: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स

0: आज से ही सॉल्ट, फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डालें। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। <So easy.
2: laughs> अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कनेगा देखा आकाशवाणी शिलोंग पर लोग नोंग सुंगा फिरंग साब निहा का प्रोग्राम की तो गंजन गिनी बतेंग शु शु या का प्रोग्राम हगने का पौर गिनी सुंगा प्लंग सिक जिंगरवाई ना का प्लीम दबंग थ्री kajingruai naina ladie berwai da chief ali pat sakoi pat kajingruai nakaplim ddpati chali anna berwai du arman malik nagesa bengi parlog ha ke program git gunjan kelawan shapinaka akashwani shillong.

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश।

0: भेजने वाले श्रोताओं के नाम कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
1: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
1: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
1: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
1: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
1: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
1: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: क्या बात है।
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है। श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
1: जी,
0: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भोटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
1: जी,
0: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी,
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओ, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न

0: आज की ही जानकारी से तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करेंगे।
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए।
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज, बहुत
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही,

0: ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
0: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
3: हुआ? मुझे भी कैसे हो सकता है
2: यार, सबको नकली मिला। तुम भी नकली? तुम
3: नकली
2: आया था?
3: नकली ही रह सकता है?
2: नकली कैसे हो गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
3: सभी
2: ने बोला कि नकली है।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
0: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज। यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
1: कहिए, मेरी आज्ञा है। आप सभी निसंकोच कहिए।
0: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है। बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
4: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
7: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं चल चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं। तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: And with that, we come to the end of this NCERT sponsored program. We hope you found it informative and engaging. Stay tuned for the next program. Have a wonderful day ahead.

नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से आपकी दोस्त आप अपने सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत करती है। ये है आकाशवाणी का शिलोंग केंद्र, मीडियम वेव 347.2 मीटर अर्थात 864 किलो हर्ट्ज पर श्रोतागण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे, थर्ड फ्राइडे हम सुनवाते हैं गज़लों और कव्वालियों से भरा कार्यक्रम महफिले मजलिस। बहुत ही खूबसूरत से गीत आपको गज़ल और कव्वाली के रूप में सुनने को मिलेंगे। तो अपने श्रोताओं के साथ चंद पंक्तियों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मन के किसी शांत कोने में कुछ यादें चुपचाप रहती हैं। मन के किसी शांत कोने में कुछ यादें चुपचाप रहती हैं, ना आवाज करती हैं ना कोई शिकायत कहती हैं। फिर एक दिन यूं ही अचानक होठों पर मुस्कान सज जाती है। कोई पुरानी बात, कोई अधूरी मुलाकात दिल को फिर से छू जाती है। तो इन खूबसूरत पंक्तियों में प्रीत की कहानी बयां करता हुआ ये कार्यक्रम महफिले मजलिस। तो चलिए कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गीत, वो कागज की कश्ती। आज फिल्म से सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल।

हमारी जो दौने बहुत ही खूबसूरत से एहसासों से भरी ये गज़ल सुनी जगजीत सिंह की आवाज़ में। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली गज़ल सुनते हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत से शब्दों के रूप में ये गज़ल है। फिल्म है साथ साथ और आवाज़ें हैं जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की। कुलदीप सिंह ने इस गज़ल को अपने संगीत से और भी खूबसूरत बनाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप जिनके करीब होते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल, खूबसूरत से एहसास जो कहीं ना कहीं दिल से रूबरू हो जाते हैं, और उसी में हम खुश हो जाते हैं या गम के साए में चले जाते हैं। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत गज़लों के साथ आप सुनते हैं जोधा अकबर से जश्न-ए-बहारा। खूबसूरत सी कवाली जावेद अली की आवाज़ है, और ए आर रहमान ने अपने खूबसूरत से संगीत से इसको सजा दिया है, और बोल यानी कि हमारे गीतकार हैं जावेद अख्तर।

तो दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी दिखा रही है एक खूबसूरत सी गज़ल, तो आपकी दोस्त आप तक पहुंचा ही सकती है। चलिए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज़ में, पंकज उदास वॉल्यूम 1 से, ओ साहिबा।

तो हमारे श्रोता दोस्त जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए खूबसूरत गजल और कवालियों का आनंद ले रहे थे, तो दोस्तों बारिश की बूंदें और समय में बहुत ही एक समानता है कि बारिश की बूंदें भी किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं। ऐसे ही वक्त होता है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है, चलता रहता है। तो स्टूडियो की घड़ी समय दिखा रही है कि आपसे विदा लेना पड़ेगा। 2:30 पर एक बार फिर से पुनः हाजिर होंगे। तो बस चलते रहिए हर पल एक नई शुरुआत के साथ। दीजिए अपनी दोस्त को विदा। नमस्कार।

खुबलाई भी बारह की पार लोक नों सिंगाप गनी गदेगा आकाशवाणी शिलोंग कबवन जफियो लाइस पासा फुन्यो पॉइंट आर मीटर मिरम वेव उबेरिंग कान मरु प्रस्पा हंडु साउ किलहज कुम जु रु फिला बनियो सुंगो हक न्यूज ऑन एयर एप बरेक टीटीएच नि पिडियांग सुंगो भाई भी बारो शका प्रोग्राम न थ्वे क डॉट नोट बट हक ने प्रोग्राम मेन तक सिंगी पार लोंग इदन वन वलम शपी कि चिंगरवाई कि बसंगो दना ना कि नोंग रवाई Shinrang ki jingruai ge bangin sapin sngau ki longa jingruai chong e ba man kya tho marbanyang ki jingruai chong e edmund kongs a baru ki jingruai ji ba din weld kar ti parlong ngin ya sedang ban ya ka program da ka ba ngin ya sngap lang shwa ya ki artli ki jingruai chong e ba man kya tho marbanyang Haki artli ki jingruai ki beila ai kerteng ka ayom ksiar bat ka let gai samla hanong kendong. Kenikadei ka akashwani shalom.

0: Kanika deka akashwani shillong kabawan chapiu lai spa safuhinyo point army to medum we beringkat baru praspan rupusau kilahat kumju ru hak news on air app pat ke DTH parlok nong sngap hak ni kapor in malam chapi ya ke program ke jingi kailang hak ketin hindi ka jingatu khana ni ke storytelling inong hikai di ishailen karpuri ki khana imiwan pentingan karpuri bat Ivana Lingdo.
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में हम पढ़ेंगे एक छोटा सा कहानी और इस कहानी के अंतर्गत बच्चे कुछ नया सीखेंगे, कुछ नए शब्द सीखेंगे और कहानी में क्या है कहानी के भाव भी सीखेंगे। खुबले ये भी बारो कि बस या कने का प्रोग्राम का हिंदी लेसन हा कने का पोर इन पुरी या कवे का जिंगे थो खाना का बलिंग कन बट लंबा कने का जिंगे थो खाना हा कक्ति हिंदी कि खना कि यो बन स्ंगप बट बन लर्न लर्न इ बन टिप या कि किंते इन कि बथमाई ले से कि बम पोई प्रखात कि किंते इन कि बंगी पिंडन कम न का पोर शका पोर हिंद्रे निम द टिप भा ने से कन लोंगकुमता बट के ए कचिंग मु चंग कचिंगे थो खाना रु इन ला बन टिप लंबा इन इ जिंगे थो खाना इबा लिंकन ते हकने का पोर गडन बनगा आर्मुट की खन्ना स्कूल। श्रोताओं, इस समय हमारे साथ दो छात्राएं हैं। मैं इनसे कहूंगी कि वे अपना अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम मिवन पिंतिंगन खरपुरी है।
3: मेरा नाम आइवाना लिंगडो है।
1: शाबाश, आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तिमंतांग अनपुली क्या करने का जिंगे थोखना कबलों कुमने। एक दिन रानी ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा, हक वही कसनी का रानी हक पोर बकला वन फाई नला स्कूल कला ओंग या ककमे। आज हमारी अध्यापिका कह रही थी कि पुस्तके रखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए। रानी कला यथो एला ककमे डक ओंग मई मिंता कसनी इनोंग ही काल जंगी इला ओंग यंगी बा कप्लक

0: कचोंगी करीबन लोंग कब खोज बट कब इतना। अगले सप्ताह वे हम सब के बस्ता देखेंगी हकने कतयो कबन वन इन से चेक लनी इन से पेट लुट यहाँ की प्लकोट की जोंगी। जिस लड़की का बस्ता अच्छा होगा उसे एक सुंदर इनाम दिया जाएगा। किनो किनो किखना की बडन या का प्लकोट कब इतना कब खोज इता इखना इन से यो या कवे का खुश नाम ना इनोंग हिकाई। रानी की माँ खुश होते हुए बोली, ठीक है ते कमेजों का रानी क्लासमुक में बट को ऑंग तो मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा बेल बूटे वाला बस्ता बना दूंगी। ते ककमे चंका रानी कल ऑंग बा तो ngang an sapin su ya ka khun la jong ka wei ka school bag la ne ka plakot ka ba itanat bha hakaba ki don ki jing su jong ki sinti। रानी माँ की बातें सुनकर खुशी से उछल पड़ी। बटकर रानी कला कमेन हडू कत्ता कत्ता शिशन अंक कवे कुमता बटकला किंथी उछल कमन किंथी मो। दूसरे दिन ही पाठशाला में रानी की कक्षा की लड़कियां अपना अपना बस्ता लाए। बट कुमता ही शिशन ओंग इनोंग ही कई कुमता कसंगी कुमला शाई राबुन की खन्ना की बलावन रा यला की प्लकोट स्कूल की बथमाए। रानी बहुत समझदार लड़की थी। करानी पट कलों का खन्ना कब स्नोथो कबलोंग स्मार्ट भा और जानती थी कि कपड़ा हाथ लगते ही मैला और खराब हो जाता है। बट कत्यप्रु ब कपलाकोट कबसु ढका जान कन सजब क्लोय। इसलिए वह अपना नया बस्ता पाठशाला नहीं ले गए न मरकता कम शिमला रा या कता कपलाकोट बथमाय शस्कुल हा कता का स्नी पाठशाला कमुट का स्कूल मेला कमुट बंसा जबो खराब कमुट कंसा स्नियो दे ते कुमता कने का रानी का शिमला रा या कता का प्लकन। इनाम वाला दिन भी आ पहुंचा। दे कुमता ला याद कसनी पर कपोर पर रोशित यो बदला पोई कता कपोर बला दे बन आय नो या कता का खुशना। सभी लड़कियां अपने अपने नए बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी। बारो की खन्ना किला रा ये की प्लकत स्कूल की बथमाय बर किला याद छ स्कूल। सभी ने इनाम पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। जमीन आसमान एक कर देना करे का इडियम्स मो। ते हंगने किनिये की खन्ना बारो खनांग बकिन यो या कता का खुशनाम को बे इनोंग ही काई इला ओंग हकी बारो किला ये तरे शीतम बन वो बेट या का प्लकोट का जंकी बकिन पिन खोज बेट या का प्लकोट का जंकी। सभी लड़कियां इस एक विचार से खुश थी कि इनाम उसी को मिलेगा। बारो की खन्ना किला डनी या कता का जिंकरमैन बमकी किन से यो या का खुशनाम शिवत मंगा गा रुंगा डनी या का जिंकरमैन ई आइवाना रु इडन का जिंकरमैन ई मेवान इडन का जिंकरमैन मन ताका सी ते का प्लकोट जंगा का लोंग जी शाका बखुत बट मंगा ही गन यो या कता का खुशनाम। परंतु जब उन्होंने रानी का बस्ता देखा तो सब हक्की बक्की रह गए। हिनरे हकता का जिम्मत का जंकी हिरंग प्रखात कुमता बट शीसनियो ई या कपला जंका रानी बारो किला लिंगो क्योंकि उसका बस्ता सबसे अच्छा था। नमार बा कपला जंका रानी कला लोंग शीशा कता कपला कब इतना भा। पाठशाला जाते हुए सपने देखा कि एक स्थान पर बहुत से लोग इकट्ठे होकर खड़े हुए थे। इकट्ठे कबमुट बकिलाया यंगलंग किया लुमलंग हजू स्थान कमुट का चका सपने देखा बारो कियो ई देखने का रानी कलेज स्कूल लंग प्रिंकाट बट की परलक कुमता हक पोर बकल डंगले छ स्कूल के यो ई बक्ता की ब्रियो शिपुन किलाये यंग हकता का चका। ते रानी और उसकी सहेलियां रुक गए। नमर कुमता का रानी बटकिता की परलोक सहेलिया कमुट की परलोक खन्ना कंथई मो सहेलिया कमुट की परलोक खन्ना कंथई। ते कुमता कने का रानी रू कला यंग लंग हंगता बटकिता की परलोक जंका बन पेट बा जायु। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री जमीन पर पड़ी है। किलायो ई बक वही कतमन कला थिया हापो मदन हसुरक उसके शरीर से कई स्थानों से लहू बह रहा है। बट न कमेट चौंका न कबोन की जका कला तूच कसनाम लहू कमुट कसनाम कई डक वही पट का कंतेन चौंकसनाम डक हिंदी फिर अंकन मा ते कंतेन कदई खून डंग ऑंग खून फिर अंकन मा मंता खून कदई का स्नाम ते डक वही पट का कंतेन न कबंता का खून कदई लहू कदई के ए lahu hatu ang lambat nga lahu
1: lahu
0: hoi te kane karani kalai iba kata katemben bapulikan rat kala tu takis nam naki babuan ki benta jong kamet ka jong ka aur un par makhiya bhin bhina rahi thi makhiya bhin bhina rahi thi makhiya ki de kiskan mo ki to kiskan yong bhin bhina ka mot ba ki her halor jong ki ta ki jaka ki bamong ki jong ka pat ki ta ki jaka ki bamis nam बुढ़िया बहुत दुर्बल लग रही थी बुढ़िया बहुत दुर्बल लग रही थी कता कतमन कला ई तुलट भाडो कता कतान नलोर पकला तमन नलोर पकला मंग कला मी किसनाम ते कुमता कला ई तुलट दुर्बल कमुत बतुलट मो कब्रियो क बतुलट क बमडन बोर वह उठ भी नहीं पा रही थी कम शिमला बनखेरू उसके हाथों में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मक्खियां उड़ा देती कमडन तंग वट का बोर बकन रा या ककती लजंग बकन बे या किता किसकान की बहेर हलोर का मैट का चंका उसे मक्खियां सता रही थी किता किसकान की रंग पिंडिक यका वह लोगों से विनती कर रही थी विनती कमुट कृपान विनती कमुट कुमनो बन कृपाट हो कि कोई उसके घावों को कपड़े से ढकते कृपाट ये कि ब्रियो बबंडन मनु मनु बन पिन कुप जान है किता की जका की बमंग का जंका नमर बा किता की स्कान की पिंडे खड़ो करता करता जिसे उसे उन दुष्ट मक्खियों से छुटकारा मिले खनांग बकन ला न किता की स्कान की बहर परंतु कोई उसकी विनती पर ध्यान नहीं दे रहा था नरे मशमला डन उबेर उब्रियो वाला रंगबा लने का प्रयोग को बला रंग बा बंसगप या किता की जिंकर पाट चंका रानी ने जब बुढ़िया की ओर देखा तो उसे बड़ी दया आई पर का रानी शिशनियो ई कता कतमन ब्रियो पपली का बला थिया अपो सुरक कला ईसन ए दया कपमुत बन स्ंगौ सिन ए दया कमुत बन स्ंगौ सिन ए घर पास होता तो दौड़ कर कोई कपड़ा ले आती लडा डे बका चन का येंग ते कंजन डला लेट ब्यांग शयेंग बन बन डेट वन रह ढका वही का चन परंतु वह घर से दूर आ चुकी थी हिनरे कला उपमी न येंग बट कला खम जिंगाई ना ला येंग सहसा उसकी दृष्टि अपने नए और सुंदर बस्ते पर पड़ी पर किंसन किंसन का कनमाओ पर कयो ई अला का स्कूल बैग ल जोंग लने का तक प्लकट ल जोंग कब थमाई पर कब इतना उसने जल्दी ही अपने बस्ते से पुस्तकें निकाली और उसके टांके खोलने लगी बट कले कुमनो कला सही वुड वुड या किता की कट नला कता का प्ला का जोंग ल जोंग कब इतना बट kala lau ya kita ki jingsu mo banak tana basu banchna ya kata kapla kala lau ya kita ki jingsu baro ab wah basta nahi raha ek bada sa chokor numa kapda dikhne laga bat kata ka jan kata kapla kam shimla sa sa kapla rei kala long no ka jan ka ba saudong kala long no ka jan ka ba saudong rani ne aage badhkar us kapde ko budhiya ke ghavo par dal dia berkata rani kalau kumno ya kataka jan kalau let berkata tap ya kataka temen tangan kelish wakat tu kat ni kini ki khasi mining hato pidang kan mau ne em meneng ong kumno patshala kamut ayu
1: kaskul
0: kaskul hoot ti kharap kamut ayu
1: bala senio
0: hoot ka bala senio isliye kamut ayu
1: na kataka daw
0: hoot na kataka daw mewan inam kamut ayu
1: kusnam
0: खुसनाम इनाम खुसनाम ते सप्ता मनोबला बन अंग यंगा सप्ता कमोट एयु
1: सितायो
0: सहेलिया कमोट एयु सहेलिया आइवाना फिला बन अंग
1: की परलोक कंथे
0: हो की परलोक कंथे तो आते गिने बतंग ब्यांग ये कने कचिंगे थो खाना मो रानी अपनी सहेलियों के साथ जब पाठशाला पहुंची तो अध्यापिका ने उससे पूछा बट का रानी हक पोर बकला पोय रिंकट बट किता की परलोक चंकाश स्कूल कनों ही काई कला कली रानी तुम्हारा बस्ता कहाँ है रानी शनो कपला जम्फी रानी ने एक एक करके सारी घटना अध्यापिका को सुना डाली बट कथा का रानी कला यथोल पारो ये किता की जिंजिया लने की इंसिडेंट की ब्लाजा हंगता हपो लंती कला यथोल या का नोंग हिकाई लचंग सारी कहानी सुनने के बाद हडियन बकला स्ंगप लोट या किता की jinge thuk hana jongka rani lani kita ki dau baka ai ka rani ka nong hikai ka sa ong adhyapika ne kaksha me ghoshna ki ki inam pane ki adhikari rani hai bar ka nong hikai ka sa ong ba ka khus nam ka dan hok ka rani banyo kyunki rani ne kisi asahai ki sahayata ki namar ba ka rani kala yarap ya kita ki priyo ki bamdan nong yarap kita ki priyo ki bamdan nong yarap sahayata ka mun ka ban yarap leni ka jing yarap mo isliye uska basta hi sabse acha mana gaya hai isliye na kata ka dao ya ka school bag chongka la ne ya kata ka plakot la ong pakadei ka plakot ka ba itanat shisha यह कहकर अध्यापिका ने रानी की पीठ थपथपाई बट मार्सन अंकुमता कनोहिकाई कला थाप मैट या का रानी मार्सन अंकुमता कनोहिकाई कला थाप मैट या का रानी और अलमारी से एक सुंदर गुड़िया निकालकर इनाम के रूप में रानी के हाथों में थमा दी बट कला से ये वे इखोन मंडियो इब इतना भा न का अलमारी बट कला आय या का रानी ते कब मुद कता का खुशनाम मनु बयो आई वना मनु बयो या का खुशनाम
1: रानी
0: का खुशनाम ना यो अड का रानी किसी भी वस्तु की अच्छाई उसकी सुंदरता में नहीं बल्कि यदि वह किसी अच्छे काम में आए तभी वह सुंदर मानी जाती है देख एक जिंगी काई का बंगी यो अन्ना कने का जिंगी थो का ना का लोंग बा का नू कत्यार कम शंग हा का जिंग इतना चंका हंड्रे का शंग हा का नू का रुकम का बंगी गिला पन पंडन काम पन या का तांगी ओं का jing itana lada ngi dei ki brio ki ba bha brio hendrei ka jing long pat ni sneo te ngim long ki brio ki ba bha namar kata ngi de ban long ki brio ki ba bha om ki brio ki ba bha brio te na ka ni ka jing yethu khana ngi yo bat ni sno thu ba ka no ka no kam dei ban long e tang ka ba itana hendrei ya kata ka jing itana la thau dor ba ka long ha ka no ka rukam bangila ban pen yarap da kita ki diar to sakhan diar kini ki meaning ha ka khasi la da phiya kan mau bat phila ban ayanga aivana ha to ang ma phi sahasa kamot ayu
1: kinsan
0: ho kinsan kinsan mo kinsan kinsan dani suddenly me wan vastu kamot ayu
1: katiar
0: katiar ho to ladkiya kamot ayu me wan ladkiya
1: ki khanna kan thai
0: ki khanna kan thai aivana kamot ayu asman
1: Kasun beneng
0: hoi. Di kendiat kijin keling an keli yafi. Mewan pila ban ong yanga. Ma ne rani se kya kaha?
1: Ma ne kaha ki we uske liye sundar sa bel bute wala basta bana degi.
0: Hoi. Hato ong ringkat ban nga. Pek hang tu fidang tulun an pi api puli kowe kowe ka kentien. Hato ong ringkat ban nga. Ma ne kaha?
1: माँ ने कहा
0: कि
1: वे
0: उसके
1: लिए
0: सुंदर सा
1: बेल बूटे वाला बस्ता बना देगी
0: तो ते आई वना फिलाबन आई जुबा बेंगा सभी ने इनाम पाने के लिए क्या किया
1: सभी से इनाम पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया
0: और सभी ने इनाम पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया बरो बकिन यो यकता का खुशनाम किला यत्रै मैट बन मिनसी रानी ने क्या देखा
1: रानी ने देखा का एक बुरी स्त्री जमीन पर पड़ी है
0: और करानी कला यो ई बा कवई कतमन कलाथिया हपो मदन बुढ़िया कैसे लग रही थी मेवन आप उत्तर दीजिए
1: बुढ़िया दुर्बल लग रही थी
0: और बुढ़िया दुर्बल लग रही थी कब मुन कतमन का ई तलत बुढ़िया को कौन सता रही थी मेवन हा तो आई जुबाब चंगता
1: बुढ़िया को मखिया सता रही थी
0: और बुढ़िया को मखिया सता रही थी मखिया कमुट की स्कान की
1: किसकान
0: किसकान रानी ने अध्यापिका को क्या बताया?
2: रानी ने अध्यापिका को रास्ते पर हुए घटना के बारे में बताया।
0: और मेवन फिलाया ले बन पुले यका जुबाब कबड़े ते कुमने न कपौर शकपौर निनंग बन डंग बन पुले। आइवना, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
1: इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए।
0: हाँ, कदा कलों का जुबाब कबड़े हिंद्रे फियोंग इस कहानी में कमरे इस कहानी में कदे इस कहानी से कमुट ना का ने का जिंग्या थो खाना मो मे कमुट हकने के ना का ने का जिंग्या थो खाना नियो ये का जिंग हिकाई बंगी दे बनिया रब इवे या इवे। छात्राओं, आपने बहुत बहुत अच्छा उत्तर दिया है और कोशिश भी की कि आप हिंदी में कई प्रश्नों का उत्तर दे और साथ ही साथ आपने कई हिंदी शब्द के खासी अर्थ भी पढ़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अगले बार आप फिर से भाग लेंगे हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: Parlok nong sngap ketu kolong kecing hikai haka ketin hindi, bat ngipin ken mawi pi bahak kepuar arbeji ngin seso bat ka Akashwani Delhi na kementa ke kubor haka ketin pareng bat penbut da ke kubor haka ketin hindi haka puar arshipuwa. Bat ngin suan pas haka station kecing haka puar arshiteng haka program hindi Gulshan Gulista di tat adu ketu kepuar kede-kede ka Akashwani Shillong.

0: अदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों

0: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
1: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
2: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
3: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी रखी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के

0: जाएं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर, और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति। आपसे एक बार फिर से रूबरू होने उपस्थित हुई हूं स्टूडियो में। ये है आकाशवाणी का शिलोंग केंद्र, मीडियम वेव 347.2 मीटर अर्थात 864 किलोहर्ट्ज़ पर हमारे श्रोता दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी सखी सहेलियां भी ज़रूर जुड़ी हुई होंगी क्योंकि उनका ये होता है मी टाइम। जी हाँ, जिंदगी में मी टाइम होना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी हम मानसिक तौर पे थोड़ा सा राहत महसूस करते हैं। तो प्रोग्राम प्रस्तुत होने जा रहा है गुलशन गुलिस्ता, जिसमें प्रभु भक्ति और देशभक्ति भरे गीत हम आपको सुनवाते हैं। तो क्यों ना माता की स्तुति करता हुआ पहला ये भजन सुने हम सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में, माता शेरावाली भर दे झोली खाली। तो बहुत ही खूबसूरत सी स्तुति है, उत्तम जगदीश का संगीत और निदा फाजली के बोल हैं।

माता की स्तुति करता हुआ ये भजन आपने सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत सा देशभक्ति भरा गीत। ये है जलवा एल्बम से, लंदन में इंडिया। आवासी है इस गीत में सुखविंदर सिंह और पंकज उदास ने। संगीत दिया है आनंद राज आनंद और देव कोहली गीतकार।

कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डालें। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी का शिलोंग केंद्र मीडियम वेव 347.2 मीटर अर्थात 864 किलोहर्ट्ज़ पर हमारे श्रोता दोस्त सखियाँ रेडियो सखियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सुन रही हैं प्रभु भक्ति और देशभक्ति भरे गीत। तो चलिए सुनते हैं सूफी हिट ये गीत।

तो हमारे श्रोता दोस्तों ने कार्यक्रम के आखिर में सुना जोधा अकबर से ये बेहतरीन सी कवाली, खुदा की पुकार, अंदर से एक तड़पन सी क्या खुदा के साथ भी कनेक्शन होता है। तो दोस्तों, जिंदगी जैसी है उसे वैसे ही अपना लो, जिंदगी जैसी है उसे वैसे ही अपना लो। हंस नहीं सकते तो थोड़ा मुस्कुरा लो, हर हाल में उस खुदा का शुक्र मानो जिसने तुम्हें जीने के लिए एक और दिन दिया। तो इसी के साथ खूबसूरत से अल्फाजों के साथ आपकी दोस्त रफ्ती लेगी आपसे विदा। शाम की सभा में एक ही संगीतकार के गीत में पुनः उपस्थित होंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क

0: बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान
1: विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से
2: सूरत मजामान है जो सरस मजारू चित्र बनाए देते हैं।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए साढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खुबलाई सिसि सिम्पात एपी बारो की पारलोक नो स्नाप कनी गरे का आकाश वाणी शिलो बरहसुआ बनि या शखमात पर की प्रोग्राम जोंगी नंगनी निपन के नाव शफी निपन स्नो शफी ये की प्रोग्राम की बफेंसी अस्नो मता बारो शि जानमेत नागनी का स्टेशन ते से शि फंग पोर का ता का पोर सांग शि फवा फिन अस्नो ये की प्रोग्राम एक की संगीर संगीतकार की गीत हाग बफेंसी अस्नो Yagi Jingwai Naga Film Hindi. Garu program Garman Shakpi Hagapur San Sao for Minute. Hagnika program Pansi Osno Yagi Jingwai Jong Imal Seng Marak Bat Imanisha Marang. Kakubor Hakdin Garu Gnwan Shakpi Hagapur Nriu Lala San Minute. Hagapur Nriu Shpuang Nwan Lam Shakpi Yaga program Jaintia. Hagba Pansi Osno Yagi Kato Gnagi Jingwai Na I Selby Pasa Bat Na I Shangan Paswet. Rusan po minute idon yak kubarak tin jain dia haga pon rusan po minute kumaj wan man lagasni ka program ki sau samoy hangni pisno shupi yak jingkran na I shi rubin taryang halor kapang kijat jingpang haki dokha bat kilat jingeda haga pon nyolala shpo minute ngine so bat ka akash vani delhi nagmanta ka broadcast of special bilingual series Jonga News Service Division Akashvani Ban Aida E Annapurna Devi WCD Minister Kikubor Hakitin Khasi Gnwan Shapiya Kapoor News San Po Minute Bar Hakapoor Prabji Ngine So Bar Ka North East Station Jonga Akashvani Delhi Nagabanda Ka NES Radio Bridge Program Hakapoor Prasopusani So Bar Ka Station Jonga Akashvani Delhi

आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से हमारे सुनने वाले श्रोताओं का तहे दिल से आपकी दोस्त तृप्ति स्वागत करती है। मीडियम वेव 347.2 मीटर अर्थात 864 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और खूबसूरत कार्यक्रमों का मजा ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और हर शुक्रवार की शाम को एक ही संगीतकार के गीत कार्यक्रम आप सुनते हैं। एक ही संगीतकार द्वारा संगीतबद्ध हिंदी फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे और आज के हमारे संगीतकार हैं विशाल शेखर। जी हाँ, विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध गीत, उस गीत की श्रृंखला में सबसे पहला गीत आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में।

तो दोस्तों चलते हैं अगले गीत की ओर, जो नीरज श्रीधर, शेखर राज जिनानी, विशाल डडलानी की आवाज़ों में एक खूबसूरत सा गीत लिया है ब्रेक के बाद फिल्म से। और विशाल शेखर ने संगीतबद्ध किया है, ये तो आपको मालूम ही है। साथ ही गीतकार हैं प्रसून जोशी।

तो हमारे श्रोताओं के लिए चुलबुले गीतों का पिटारा लेके हाजिर हुई तृप्ति एक और खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाएगी शान की आवाज में, और इसके बोल भी लिखे हैं विशाल डडलानी ने। खूबसूरत गीत हमारे दोस्तों के लिए।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनेंगे सुरेश वाडकर और श्रद्धा कपूर के युगल स्वरों में। खूबसूरत सा गीत फिल्म से लिया है, हैदर फिल्म से। चलिए सुनते हैं हम और आप।

तो दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत आप अभी सुन रहे थे। इसके साथ ही आपकी दोस्त को लेना पड़ेगा विदा। बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म हैदर से था। तो अपनी दोस्त को दीजिए विदा। कल पुनः एक बार फिर से आपसे रूबरू होने के लिए आएंगे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और कार्यक्रमों का आनंद लेते रहिए। दीजिए अपनी दोस्त को विदा। नमस्कार।

0: belong at 9.7 degree Celsius, but kebahir kalong at 4.7 degree Celsius. Kajing hap selap. Hasilong kalong 1.7 millimeter haduk prashteng menemistem, haringa prashteng tak haduk belayu, ia kena kajing pentip kalong 0.3 millimeter. Hasora kalong sapu pra point pra millimeter haduk prashteng menemistem, haringa prashteng tak haduk belayu, ia kena kajing pentip kalong baomdon kajing hap selap. But ha umyam kalong kendai point iway millimeter haduk prashteng menemistem. Hadin ka prashteng tat haduk balayo ia kan ka jing pentep kalong ba omdon ka jing hap slam. Ka jing hop ka sun meneng hashlong kalong prapo pra na ka shispa menstep bat prapo nriu na ka shispa janmin. Ka jing long jong ka sun meneng hashlong bat haki benta ba mar jan jong ka kalong bakan don ka jing hap slap ka ba mulumala haki katu ka ni ki jaka. Bat ka jing maham kalabanwan ulap ba ba ka jing tit upertat ba ka jing thaba ka leile haki kat kat ni ki jaka bat kandon ga jing bek leer ha ka jing stat ka ba lai phau hadu sau phau kilometer ha ka shikanta kitu bintan gilong jing long jong kusin bine kumbala bu dak menta ka sni ka ni ka wan shafi na ka akash vani shilong yai sa ba ni na ka benta ka program ka banbu
1: Pili yuli itu kedon. Eme ngapit baka don em kutuku sya plus F. Plus F ayuli kata. Mitip haka baam ka bangibam lada dunai ki nutrien baki vitamin ka kata ayah kamet ka bor perkat wat ya kikam ki jambaman ka sihiru. Te haba pitir ukha u ata kamlu ka umpenyang ni kedut ki badon ya ke sya plus F ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke sya plus F na ka bentak ke jing im ke babha na ki nutrition ki bapura wat ban yo ke jing mentoy kam tamme haka kot ke kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: यार सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है इस बार तो लगवा ही देता हूँ जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई आप भी लगवा ही दो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in
6: कनेगडे का आकाशवाणी शिलांग बतनी प्रियंग स्नो भाई पी शाह का प्रोग्राम की साव समय Kebajuan Shephi hau lai sepak sa punyau poin armita hau medium wave, ubaya ringkat bat upra sepak 100 kilohertz.

0: hear your final words. Yes, Sir Shankar.
1: So, for example, the final words is that, you know, the climate change is real and it is here, and the time for action is now, and we have no time to waste about it.
0: Thank you. And Dr. Talukdar.
2: I think it is high time that we accept that this climate change needs our proactive attention and action, and that we can only ensure, you know, the future pathways of the human civilizations to carry forward.
0: And yes, here we come with Dr. Vivek.
3: We must support afforestation, protect our forest and water sources, reduce waste, say no to single-use plastics, and promote sustainable lifestyles. By combining community action and scientific innovations, I am very confident that we can build a greener and more climate-resilient Meghalaya, Northeast, India and the world at large.
0: Well, all our three experts have been very pro-climate advocates, especially, you know, taking this platform, that's the Radio Bridge program from our station, and again emphasizing that we need to maintain optimism with a sustainable legacy mindset. Remember that your actions, our actions matter, no matter how small, can pave the way for a cleaner, more sustainable future. And World Environment Day serves as a reminder of the shared responsibility to safeguard our planet for both present and future generations, to work collectively and foster an ecosystem where local and indigenous climate actions receive amplification. That brings us to the end of our very action-oriented and eco-friendly discussion on integrated sustainable practices and climate advocacy within communities of Northeast. I thank the resource persons for having spared your valuable time and expertise, highlighting some actionable grassroots steps individuals can take to combat climate change. I would like to thank Sri Rajiv Shankar, IFS Working Plan Officer, Forest Office Complex, Agri Farm Colony, Kohima, Nagaland. I would also like to thank Dr. Bibhav Talukdar, Secretary General Aranyak, who is an internationally acclaimed environmentalist too, and Dr. Vivek Kumar, co-founder and director of Sindoor Enviro Shillong, also member of the International Association of Hydrological Sciences and many other associations. Thank you so much once again for your time. And I also thank our listeners for joining us. I also take this time to thank the technical and program staff of all Akashvani stations for your support. This is your host and moderator, Dr.
4: Namaskar. Vani. Akashvani se samachar sandhya ke saath main Mukesh Kumar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
5: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है।

0: हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
2: The negotiating team which came from
3: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है।

0: भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage. Pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kaka Migahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी